श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आरती ठाकुर के स्वर में संत तुलसीदास की रचना। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में संत एकनाथ महाराज की रचना। संगीतबद्ध किया है डीवी करंदीकर ने।

संत एकनाथ महाराज की रचना आप सुन रहे थे डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में। संगीतकार थे डीवी करंदीकर। भक्ति संगीत के कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है रेखा रायरीकर के स्वर में। रचनाकार है संत एकनाथ महाराज।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना आपने सुनी रेखा रायरी करके स्वर में। कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में संत कान्हो पत्रा की रचना।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में सरोद वादन. आज के कलाकार हैं अनिर्बान बंदे उपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय. तो आइए सुनते हैं राग जौनपुरी में सरोद वादन. कलाकार अनिर्बान बंदे उपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल followed by a Hindustani vocal recital. Listen to a Sarod recital in Rag Jaunpuri. Our artist is Anirban Banerjee. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy. Listen to a Sarod recital in the Rag Jaunpuri. Our artist Anirban Banerjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जौनपुरी में सरोद वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अनिर्बान बंदोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल। आज ही कलाकार हैं बर्णाली चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार। तो आइए सुनते हैं राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल गायन, कलाकार बर्णाली चट्टोपाध्याय।
1: You were listening to a Sarod recital in Rag Jaunpuri. Our artist was Anirban Banerjee. Accompanying him on the tabla was Tarun Roy. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal recital. Listen to a khayal in Rag Gurjari Todi. Our artist is Barnali Chatterjee. Accompanying her on the tabla is Devashish Sarkar and on the harmonium is Jayant Pandey. Listen to a khayal in Rag Gurjari Todi. Our artist, Barnali Chatterjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी बर्णाली चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग गुर्जरी तोड़ी। Our artist was Barnali Chatterjee. Accompanying her on the tabla was Devashish Sarkar, and on the harmonium was Jayanta Pandey. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Meet Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं तबला वादन, कलाकार है तपन सिन्हा। प्रारंभ में आपने तबले पर प्रस्तुत किया ताल, तीन ताल सुनते हैं। आपके साथ हारमोनियम पर है तन्मय देवचक्के। तो आइए सुनते हैं तब पर ताल, तीन ताल, कलाकार तपन सिन्हा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना तपन सिन्हा द्वारा प्रस्तुत तवे पर ताल तीन ताल। आपके साथ हारमोनियम पर थे तन्मय देवचक्की। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं तबले पर ताल पंचम सवारी, कलाकार तपन सिन्हा। आपके साथ हारमोनियम पर है तन्मय देवचक्की।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे तपन सिन्हा द्वारा प्रस्तुत तबले पर ताल पंचम सवारी। आपके साथ हारमोनियम पर थे तन्मय देवचक्के। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। राम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है अमिताभ चटर्जी का सितार पर बजाया राग बागेश्री में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित रचना रूपक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital by Amitabh Chatterjee. He is accompanied by Vinod Pathak on tabla. First listen to Alap, Jod and Jala in Rag Bageshri. The Vilambit Gat is set to Rupak Tal and Drut Gat is set to Teen Tal.

0: अभी आप अमिताभ चटर्जी का सितार पर बजाया राग बागेश्री सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग मिश्र शिवरंजनी। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल बाय अमिताभ चटर्जी। नाउ लिसन टू राग मिश्र शिवरंजनी। ही इज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला।

0: अभी आप सुन रहे थे अमिताभ चटर्जी का सितार पर बजाया राग मिश्र शिवरंजनी। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग मिश्र शिवरंजनी बाय अमिताभ चटर्जी। ही वाज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, आप सभी का कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज के इस कार्यक्रम में सुनते हैं संजीव अभ्यंकर का गायन। आरंभ में आपने प्रस्तुत किया है राग शुद्ध कल्याण। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है बोल न लागी पपीहा। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और बोल है पिहरवा मोरा रे। आपके साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं प्रमोद मराठे और तबले पर है सुभाष कामत। सुनते हैं संजीव अभ्यंकर का गाया हुआ राग शुद्ध कल्याण।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे संजीव अभ्यंकर का गाया हुआ राग शुद्ध कल्याण। आइए अब सुनते हैं संजीव अभ्यंकर का गाया हुआ राग जोग। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है पिया घराना। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है तुम बिना कैसे कटे दिन रतिया। आपके साथ हारमोनियम पर है प्रमोद मराठे और तबले पर है सुभाष कामत। सुनते हैं राग जोग, कलाकार संजीव अभ्यंकर।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे राग जोग। कलाकार थे संजीव अभ्यंकर। आपके साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे थे प्रमोद मराठे और तबले पर थे सुभाष कामत। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग अहीर भैरव में सितार वादन. कलाकार हैं सव्यसाची सरकार. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशी सरकार. तो आइए सुनते हैं राग अहीर भैरव में सितार वादन. आज के कलाकार हैं सव्यसाची सरकार.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट a Hindustani instrumental recital. Listen to a sitar recital in Raag Ahir Bhairab. Our artist this morning, Sabyasachi Sarkar. Accompanying on the tabla, Devashish Sarkar. Now, listen to a sitar recital in Raag Ahir Bhairab by our artist, Sabyasachi Sarkar.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे सव्यसाची सरकार। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवशी सरकार। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग गुर्जरी तोड़ी में संतूर वादन। कलाकार हैं पंडित तरुण भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं।

0: कौशिक चट्टोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग गुर्जरी तोड़ी में संतूर वादन, कलाकार पंडित तरुण भट्टाचार्य।
1: यू आर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग आहिर भैरव बाय आवर आर्टिस्ट सब्यसाची सरकार, एकम्पानिंग ऑन द तबला देवाशीष सरकार। दिस इज रागम 24/7 on DTH anytime Indian music. Continuing the concert, listen to a santoor recital in Rag Gurjari Tori. Our next artist, Pandit Tarun Bhattacharya, accompanying on the tabla, Kaushik Chattopadhyay. Now, listen to a santoor recital in Rag Gurjari Tori by our artist, Pandit Tarun Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुर्जरी तुड़ी में संतूर वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित तरुण भट्टाचार्य। तबले पर आपको साथ दे रहे थे कौशिक चट्टोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ संतूर रिसाइटल इन राग गुर्जारी टोरी बाय आवर आर्टिस्ट पंडित तरुण भट्टाचार्य, एकम्पनिंग ऑन द तबला कौशिक चट्टोपाध्याय। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 ऑन डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला।

0: तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21

0: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड से यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतु गुप्ता CBI की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti.

अब आप सुनेंगे सरदार खां का सारंगी पर बजाया राग गांधारी, तबले पर संगत की है हफीज खां ने। नाउ लिसन टू द राग गांधारी बाय सरदार खां ऑन द सारंगी। तबला अकॉम्पनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हफीज खां।

आप सुन रहे हैं सारंगी वादन, कलाकार हैं सरदार खां। यू आर लिस्निंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे दादरा धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स अ दादरा धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी सारंगी वादन, कलाकार थे सरदार खां, संगत कलाकार थे तबले पर रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classic.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन. कलाकार हैं कृष्णराम चौधरी. राग है बिलास खानी तोड़ी. विलंबित और द्रुत कर तीन ताल में निबद्ध हैं. This is Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel. Now listen to a Hindustani Shehnai Rasal by Krishnaram Chaudhary. The rendition commences with the rag Bilas Khani Todi.

आप सुन रहे हैं शहनाई वादन, कलाकार हैं कृष्णा राम चौधरी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी शहनाई रिसाइटल बाय कृष्णा राम चौधरी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन, कलाकार थे कृष्णराम चौधरी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी शहनाई रिसाइटल बाय कृष्णराम चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय ओंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग शिवमत भैरव. तबले आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Vidushi Sulochana Brahaspati. First listen to rag Shivmat Bhairav. She is accompanied by Vinod Pathak on tabla and Pandit Bharat Bhushan Goswami on sarangi.

0: अभी आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग शिवमत भैरव सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग हिंडोल। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भूषण गोस्वामी ने।
1: यू लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग शिवमत भैरव बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। शी वॉज अकम्पनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी। नाउ लिसन टू राग हिंडोल।

0: अभी आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग हिंडोल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग हिंडोल बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। शी वॉज अकम्पनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मालती पांडे ने गाई संत जनाबाई की इस भक्ति रचना से।

संत जनाबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी मालती पांडे के स्वर में। आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं गति माडगुळकर की देशभक्ति पर ये भजना, जिसके संगीतकार हैं मधुकर कोळवलकर।

समूह स्वर में अभी आपने ये देशभक्ति गीत सुना, जिसके गीतकार थे गर्दी माडगुळकर और संगीतकार थे मधुकर गोळवलकर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में पीके क्षीरसागर की ये भक्ति रचना।

पीके क्षीरसागर ने लिखी ये भक्ति रचना भी आपने सुनी संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उदय काले के स्वर में संत चोखा मेळा की ये भक्ति रचना।

अनंत चोखा मीणा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी उदय कालिकेश्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत बहिणाबाई रचित ये भक्ति रचना, जिसे गाया है उत्तरा खेड़कर ने।

उत्तरा केळकर ने गाई संत बहिणाबाई की ये भक्ति रचना भी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी शंकर और साथियों के स्वर में ये देशभक्ति पर गीत।

देशभक्ति पर गीत अभी आपने सुना लक्ष्मी शंकर और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं स्वामी स्वरूपानंद रचित ये भक्ति रचना, जिसे गाया है शंकर घाणेकर।